0: Radio Weser TV Bremerhaven.
1: आप चिंता ना करें महाराज, मैं अपने वक्षस्थल पे मीठे विष का लेप लगाकर उन सभी बालकों को अपना दूध पिला दूंगी।